0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Sethabelo off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24

आओ अंके संग हाय ना हाय देखा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नि बिशिंग तुई संग तलाना नायमानी बरक तलाना नायमानी सेबुगु नुगै तंग डेपुटी एडवाइजर मेडिकल प्लान्स आ जागा बहाय ना हाय खरक्सत लांग जाखनाय असिस्टेंट एडवाइजर भूटानी आर ब खरक्सत लांग जाखनाय फिनान्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ जागा ब खरक्सन लांग जाखनाय रिसर्च ऑफि

0: सर भूटानी सर बरक बहन गे एसिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर आ जगह खरक सान जाना एकाउंटेंट खरक सकलाई त्लांग जाना अब निबागे नरक तमुन एप्लाई खाने नहींगा हिंगे एप्लाई खाइमानो तमुंग नाइन थका आ जगह मानि न बीसीबानी एक्सपीरियंस तमुंग दंखा हे तो बेलाखे नाओ फिर एप्लाई खाइनाखान रक खाइन मान्नाय फिबा जुलाई तालनी थामजी सालमारी विशिंग सारिकनी दाम बदामी सती थामजी विशिंग अबन रक एप्लाई मा खाइनाय
1: इंडियन रेलवे निबिशिंगो बहनो किसीसा बुकचा आचुकथाई असिस्टेंट लुकु पायलट आचुकथाई छुपुंग जाकनाय बेबागे बुकचा आचुकथाई थंगो 11127 जना रंगमारी इंगना नांगनाय आईटीआई डिप्लोमा एबाखेबा जेसा सब्जेक्टो डिग्री खलाय जाकना नांगनाय उमोरना नांगनाय 30 एबा 30 बर्षनि बिसिंग अनलाइन निबिसिंतै कयलाय रेनानि पाइथाक सालमारि चिब्रुइ जुनताल सालमारिओ ताइ जे कयलाय रेनाय रंनो कम्पिउटार निबिसिंतै आमजुक मुं नाहार जाकनाय ओंखायनो रक जतन मुचुङै तंखांके इन्डियान रेलवे वेबसाइटआव थांगैनाय नरक कयलाय सुपुंगुई मानो ओ चिब्रुइ सालमारिनि बिसिंग आव हेके खनाते खनाते सों सेबुगो बरक तेलांमानि कक खना बायके हेके तबुक सों नबरतिबानि सिकांबारिया ककतुमा खना लायन
0: आव नबरतिबानि सिकांबारियानि ककतुमा साजाखा फेरांगकगै वाति वावा न हनै हजाख्लाय रिजाखा जुदा जुदा आमचायो एबा खायबा हांगो रगो तीन नितुमारी तंगान थामजिसा डिग्री सेल्सियस दे चांगमारी नैजिब्रै डिग्री सेल्सियस फियाबा मियानि जेतुमारी आबंखा थामजिथाम डिग्री सेल्सियस दे चांगमारी नैजिबा पॉइंट बा डिग्री सेल्सियस नगबारति हकनि बांगमारी राव नैजिस्नि पार्सेंट दे किसांमानि मारी राव दगजिब्रै पार्सेंट फियाबा फुंनि दामबा दामै सती थामजिनि बिसिंग वादि वाखा सा पॉइंट सा मिलीमिटार आव फियाबा गोबां वाति वाना होनै गोरोंसा गोरोंनि थायो एबा खायबा हांगर हजाख्लाय रिजाखा
1: आव हायगे आसुक जिरा खाना लागे तिनिनि सिगांबारे नबरतिबानि कक तुमार रगब गाय तिनिनि पान्दान कमथेंका आं तनुजा
0: ते आं जिकाश्मी
1: गाय हायनि खरां पान्दाव ताबुक रोजा मुं तांसा खाना लायानो रोजा मुङो खरां रुवानो लता देव बर्मा

0: আকাশবাণী আগরতলা। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে সংস্কৃত এবং পরে হিন্দি সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচক পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्यां यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरंतर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमंत्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे एकबिलियन US डॉलर परिमितं अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 बिलियन US डॉलर परिमितं आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीय संघस्य सदस्य राष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादून नगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदं ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्यसमारोहे 500+ पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीयसेनायाम् अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीयसैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्यपरम्परा अस्ति, अपि तु राष्ट्रसेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतनयात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीयगुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा एच डी

0: कुमारस्वामिन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धेः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे यूएस नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य एमटी सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीय दलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्यात् तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणाम् असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकास पर्यावरण व्यवस्थायाः वर्धमान शक्तेः प्रमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायाम् उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्डवृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी

रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: phong kaham ya phari chung sa hai no hai sini siklaro ni panda jai no go sung norok bai kreng fika tini ni jorabo au khabong tak te buk song norok bai chung kreng lai tongmani sini jai dok ni bakhak tei आउ खफंग ताखते भुक्सोंग सिंग सैमानो सिनी ओ जाइनगो हंगकिना सिंग सिक्लारनि पांदा ते सिनी सिक्लारनि वान सुकमा रसापमुंग ते खाखामुरो नरंग थानि तुबो ब्रोंनि रबायरो सिंगरोनो या फाननि चाइतगो आउ ओमो हाइनो ताबुनि अजरावो वातै पांतै अंगलाइमानि बिसिंग बिसिंग सिंग नरबाय फाइफिका जाइनक फांदावो आंनरनिता खुखरुनि दबरमा ताबुनि ओ पांदावो पुलानसिमि पाइथाक जरा तंगनाय ते नरंगनि हमचकमा रेसाप मुरक ते तिनिनि सिनो पांडा बुतांगो कगलप ते कथमा बुसारकबो तंगो आउ खपंग ताकते बु संगनरक ब्लाइनो सिनि रेसाप मु मुसामुरक तन तन चाजागो हाया देबेना गे ओवा तिन जरा वनरक बक्सा बक्सा वाते पामते इमा जागै कंग्राय रकं तबाय खना बक्सा कुलम को सांगना इं तबाय खना नरक सखबाय थांनो नायकल दि अमनो आं कचन्ना मुचंगो तमुंगनो वाती पानी रगो फिरंग रगो नक नक नुखुनी मानई खन चेराई अक्रा रंग नाइकई तंगी ख्रकसाबई ख्रकसान सुबालाई आबनो चीनी बखाक आनी बखाक आंग रंग कबंगना मुसंगो हे सोलेरिया कारे सिनी पांडा बुतांग गबाबा सों सिनी पांडाओ सों हाबलाइसेवान ट्रुक ट्रुक फायदे हिंगे ताबुनि अजराव सों खनालायानो सिक्ला कगलफनाय ताकुक रुस्तम देवबर्मा बाय सैजाक कगलब्रब ताबुनरक खनादि बिनि खुक बायथांबाय
1: आनि पुइलानि कगलबनि मुंखा सुमुयो लांगमानि यात्रि फाइदिनके ताबु कगलब फाइसिं थांलायजोआनो बुलायरक यांगोवायसा आयंगोवायसा निनां निनांगै तामुबो सालाय मोनै मोनैयै बुबार बाब्राय जाहै थांबो बोथाय गोराय थांबो बेदेग बाय थांबो खातुंमुंबाय खातुंमुं कुपुलुं अखानि खुरिव पान्थर कुपुलुं तैनि तियारिव वातै पिनि पिनि सिरोग सिरोग नबारबो सिबो पिरि पिरि मालो मावाक फर फर बारसाव खेरामबु यंग

0: 아우 카방 딱대 뭐 쇼느라 그나이 똥카 딱 그룹에서 때 브라마베르 삽작 하르삽몽 능나니 카니 이시리 어르삽몽 아우너로 카바이너 어르삽몽노 야사카나하니 앙카클라요 하기노 시니 판다워 르삽몽 코토마 코글로브록바이 퉁누그로바이너로 카나위 똥디 승외 박사 그릉의 똥디 다분히 어저라우성 하이노 하이노네 먹의 그탈 케완숙몽 두위 파이통고 시니 시클라 시나이 रितिस तिरफ्राबाई सुजाक कथमानो ताबुक नंग थनि यापना थांग तंगो नरो खाबाई खना जादि ते खालोगै खना दि
1: आनि कथमा मुसानि मुंगंखा मुफ्लिक्सा हिनकाई निनि मुंग न सकां अंगना ब्ले आउसाद आंग न सकां निनि केस न नायकोलना बागै आनि अरनो बाजाक्लाइजाक निनि केस नायै नायखाय तो असुक कतरिया फिया बा न्यूज चैनल रक निनि केस न बेले कतर केस रामै वायरल खलायै टंगलायखा हिनकाय आं निनि केस न तुयै नन किसा सुंमुं सुंनाय जे सुंमानि कुबैकंग न सादि आं थकाय कक रक खनावै माया फिया बा जदि से थकाय रक सावो हिनै उलो सायमान खाय एबा मानजा खाय हामलायग्लाक फिया बा ताबुक सादि निनि बिहिक बाय निनि बिसिंग मुंसासक ओंलायजाक दे एबा निनि बिहिक कुनु मानै नतुयै वानाजागै टंमानि दे पुइलानि सिमे करियाति खायै खुलुगै साबायदि सात आं बबाय पुइलाव' निनि इमां मुखथां मुंगै कचिं सेन्टार परिलायफ्रुनि सिमे सिनिलायमानि आं खुम्बा न पुइला नुखफ्रुनि सिमे न तुरुक तुरुक नायथकजांनानि चाजांनानि जेंसाका बिनि मगदाम बुसुतोंहाय खोनाय मुसै रांसांनिहाय मकल मकल किसा जामु कुमुननि बुथाय साजाक माहाय काजल

0: इलाजी बिथि चाया बालुखाबा एलाजी ओंगै बुखायबा दाग ओंखाता फियाबा आं ओ सालो सराय सराय खायै रमै मानसुका ब आं बाय अनेक चालसुका ब आंनि आगिनि मतम करिखा होनै आं हच्चा मुक्ति थांलिया ब ब दवै मुक्ति थांलिया ब थुकाय न आं टेप साकाय बिनि यासिमा नावै बिनि फोन चेक खालायका अ लयार हिननाय साबाय गोबांमा मेसेज रक खालायमानि कक सालायमानि नुखा ताय फट' नुखा अ हर ब थुजांनि कुनु सालिया ताय फोननि प्राइभेट रगब गोबांमा बेरायलायमानि चालायमानि फट' रक नुखा अबरं नुगै आं खरक साखाव याग्रिवै खरक साखाव नखाबाय क्लाइमा सुखनि सायब याग्लायजांमाहाय मातंखा आनि बुखा बोसा गोलैयै सांनि बिखुमु बोसावै खरं मिहिमै प्रेसार बारिवै थांखा फियाबा अ हर आं बन कुनु सालिया थुजाग बा थुसिथों हिनै तंखा साल आइखाय आंबो बाय अबरंनति कक बांलायखा फियाबा ब सांनि जाया गसिना नायलिया दायसासे खरां कतखाय आं बाय वालायखा नों आगिनिहाय जरासि रिविमाया हंखाय हाथी बादसाव सालसारक जरा मानु अबब नोंकरै अफिस थांखायब जतिन यागन आइफोन टाउन अंखकायब मेक्सिमाम नियागन आइफोन मां आंले सालबुसक एन्ड्रयड
1: आव खाबं दाउते बुसं सोंखांलाय दंमानि सिनि दाखुक रितेस त्रिपुरा बाय सुजा कथमा मुफ्लिक्सा आउ नगर सैमाखना ताबुनि अजराना तुइनो बिनि अकथमा सुजाक हंगे सिनि पान्दा करि खेबा सुं अरनो बाथाखलाय सिवान नर काहाम दंनि अक कचारिनो आंनरं ताखुगुरुनि तिनिनि अपान्दानि बासा सिनै हामबाय।

0: है छाजागो बुरी रोग राख खांगे नो राख नाय खरक्सा नु खुंगो नुगजा गजे बुरी खरक्सा क्राक काहाम बिनी वान सक मुंगबाय बिनी तुइदुलमा बाय हंकांके आनु खुंग साया होइतो स्टोंग यानि हिंजागो आनु खुंगि ब बसाइनो फोरङै मानो बताबो बसानो फोरङै मानो वाइसा वइसो निजिनि लगि संनबो गोबांमा बुरी रोग सय सिमानि बिसिं तुइ फोरङै मानो रम दिन जतनो तो सिया बाहाय के तंके काहाम नाय हाम यांगनाय तो आबो बुरी रोग फोरङै मानो एसला रोग बक्सा बक्सा बुरी रोग रम दि चला रोग आजि तो खांके आं न नुखुंसिमिन नाय तंनाय बा नुखुंसिमिन नाय तं अब्रो उमति रोग उंया वइनाय बुरी रोग वान सक थाय जे सोंब चला रोग वाय बक्सा यापिरि थानसा सेवैनाय जिनि द फानो नायकलनानि बागैनाय जों ग्राक उंथाय के द फानो ग्राक कुचु खेति सानानि थांखांके सायसं साखायसो सकां ग्राक बहाय के नाय गांगे बिनि सिमानि रायदा काहाम बिनि सायमा मानि रायदा काहाम हंके बिनि जत रमदि ब सेलेयावै गोबां मा बुरि रग दङ वाइसेउसु जे चला रग आजिर फायके आं आबरनो सङै सुगै चारि बसाबतैनो नायकलखे आबनो आनि सामुं पायखे आनि जङ आम सुख जराव सों बाथा गियावैनाय जिनि बुरि रगनि ब ख्लाय थाय तामन दं आबनो जों वान सुगैनाय ख्लायनानै नांगौ का आबो ख्लायना थांगांके फान जों बाहायके माननाय फान अफ्रुन माननाय जों जेफोर सिनाय जों जेफोर साय माननाय सय जों जेफोर रायदा सिनाय केरं सिनाय जों जेफोर जिनि मानथाय साय माननाय जों जेफोर जिनि हायुंनि कक साय माननाय जों जेफोर जिनि नबार दैबार तामगै देराखा प जागा देरामं फायखा रम दिताबो कायसा आं गारि चालगै दं हायफानो वायसा जागा अबो गारि नस्त फानांखा अफ फानांखा आबो ब जागा जे तामो देरावैनाय ब अफ ओंखा आं सायमानियाखा आं आबोनो सोनामैदा मान्नबा सोनामैमानिया अबहायनो चिनि द फाव चाया रायदा बाहायङै दंखा बबो ब तमुंजोंनो सुख्लुक सुगै दंखा आबो सायमानानि नांनाय आबो बुरै रग आबोरंनो सायमाना थांगा हांखे साग सागनि द फानो नुगै सिमियाब्ले जों सिमानि जों तो सिनि हायुंनि जत्त' बरकनि लाइबुमा नाहारै लाइबुमाव गोबां मा बोरि रग दफानि बागै तामो ख्लायलांखा आबरंनो जों परिखे सायमानखांखे सिनि खाबा जाओ इ बोरै खरक्सा बसोखे बुंख्लायगा ब सामुं दांलांखा दफानि बागै नाय नों बगिनि निबेदिता संनि कक सायमानो हिंखे दाबो रमदि ताइ गोबाङा दङ बुरि रं जे दफानि सामुं दाङै कुचुगो बुं
1: सिलायनानि
0: बागै सामुं ख्लायलांमानि गोबां मा दङ बाहाय बुरि रग लाइबुमाव जों मा परि गावबो बरिनानि नांनाय सिनानि नांनाय सियाखै बरियाखै जों आब' साग सागबो जों रागै मानिया जों दफानावबो जों राग्रै मानिनाय ओंखे रमदिताबो आब' सिनानि हिंखांखेनो जोंनि केरं रायदा बाहाय नों खरक्सा गामि आमजायनि रों सोरोंजा गिया बरकनि सिमानि बाय खरक्सा सोरोंजाक पढालेखा ख्लायजाक सेबोगो सामुंतां दंनाय अ बोरैनि सिमानि तो गोबां मा फेरलायो गा फेरलायमा नुगैनो जों सायमानो जे अ बरकनि वान सं मुं खरक्सा आहायनो नुखुं नायनाय बोरैनि वान सं मुंबाय बिनि वान सं मुं बोसोर फेरलाय दफानो तैयै दफानो तै वान सं मानिनो तैयै नाय बखे सङै सुगै जानानैनो सिमिजि वान सक नुखुङो ब वान सगो आबोनो सिमिया आं ताइ खरंनि खरकदाम जराय रगनो ब आं हायदा सोनामै मान्नो आं हायराग्रिदा मान्नो याखुं याक्राक ख्लायदो मान्नो बुरै रगनो हनै चंनाय ताइ गेसा आं गांके बुरै रगनो जों गोबां मानो बुरै रगनो दाखदि दाखदि कायर हरो हायाखेबा बुरै रगनो नुक नुखुंनि सामुं बेलाय बेदगैनाय बंनो रों सोरोंरिया ओंमानि अबो दफानो उस्लुरि दं कि बुरै सिखे से दफा ग्राकनाय दफा नसल आबनाबाय बुरै रगनो गोबां मा खायनाय गोबां मा बुरै रगनो जों पढा लेखा ख्लायनानि बागै बेलायखेनो खामावारिनाय अबो साबो सामुं ताङैमान अबो बुरै खरक्सा सिजाक जाक बनोबो सामुं तांगैमानो बुरै रंनो खाबा जारै माननाय के बिनि दफा रमदि ब हानक उङै दंफुरु बिनि नगो जि ब खरक्सानि बोसाजोग बिनि बोसाजोग बुमा बुफाबाय ब बाहायखे दंनाय बा नगो बिनि बुफायुं बोता संरबाय बाहायखे बिनि रिलेसन ब बाहायनाय बुरैनो ख्लायमान ओ बुरै बुफुरु ब बिनि सामुं बम हायटाननानै बोटाबाय बाहायखे गनारगै ब सामुं दांनाय बा बुमा बुफानिबाय बाहायखे सामुं दांनाय त' बुरैनो सायमान गाव बाहायखेनो सिनि दफाव गोबां मा सामुं दं

0: फानग्रा गाफ्रुनाय जेफ्रुबो सिनाय
1: सिनाय
0: खरक्सा रंग्रं ब्रै बाय रंग्रंया आबरि नक बसारे खांके जे रंग्रं ब खाक्राक माहाय जे बिनि मखांचिंग माहाय ब ते खरक्सानि आं बाहाय माया ब किसे केचेन हायिंग नि मा दंनाय ता मोनके ब गबां मोन सिया पिया सिनानि थांथानि व जों नांकुक मानिंखां आओ जराव दाउ मुदुमानो जे केरंग न सिनानि नांगौ
1: केरंग सिनानि
0: केरंग सियानि बाखै बरि रक बां मा सातक पितक खलाय जागु ब सयि मा दंगु जरा जरा व थकाय जागु अबब सयि दंगु ओ थकाय जाखै ताम खलायना नां केरंगु ताम दं एबा नों बरि इंगै न न सातक खा पितक खा रमप्रे समप्रे खलायका हंगे नों ब प्रोभिजन थांगै नों गबनो चुबा चु सानि मान अबो रकुन फन सिया बा निनि बाखै खाति जाक केरंग तो दा दं अब फानसे सैमिया गोबां बरि न दं फेयाबा बरि रक न चिनि ओ भारत हा कतर काहाम कुरंखाय दंनानि बागै खातिजा केरं दं तबु बरि खरक्सा न बसाय कागै रखा हंगे ब काखां गाय बिनि बसायनि थानि ओ बता मुमान थाय दं बिन बसा पुसिनानि बागै ब बाहाय केता मुखलाय केस खलायमान मानथाय बाहाय के नायमान आमुरक ब सियांगु गाबोन बागै न जों गोबां बरि रक न टेक तो मान ब सातक जाग पितक जाग फन सहि दं मानि नुक दे आफ्रु न गायसा नुखुं बेलि थांगो आबो हाय नुखुं केबेल गोबां दं खांखे न हदाब बेलि थांगो हाय दिबाना गाय ते कैसा गा गाय जे बुरि रक न पद्र पद जागाव कक सिलसाव सकाल मताय ने दा बुबुथारलायमा रं जों नुगो आबो ब कैसा जिनि हदानि कैसा बेल मुंनि सिनि मुं हाय मा दङ तामनि हिंखे बुरि रक जे हदाव सकाल मताय हेनै रम बुजागु बुथार जागो अ हदाले ब कुचुको काचा खदा उङि मानिया
1: बुरि रक न बुरि रक गांके रमदि जे द फानि बुरि रक कुचुको काजा बंनि वाम सङ कुचुको काजा बा बरक न रमदि बंनि मानथाय सखथाय जतनो दिउइनाय बरक न सेप्ले आवइनाय बसकांगो हिमनानि फान जाक आ द फा कुनु दिनो फानो ब उक्लगो उस्लुया गे चिनि बाक्सा द फाव के नुक जागो गबां मा कामियाम चाइरगो तामनि बागै सकाल मुताइनि बुथालाय दङ केबनो केबो बेरलायो जे ओ हमुक सकाल करों ब आनि बसानो चाखा हमुक आपते हायरक चिनि कक चिनि द फाव तो नुक जागो गे अब तामनि बागै गांगे बरकनि सयराय दाति सिमानि करै बरक सायमान मानि करै रमदि कामि आमचायरगो बेमार अंखा बेमार अंखांके बाक्सा बा चेम चेमखे बेमार अंगो अब बिनि साकनि गोबां मा चाया बिनि चिनि रमदि चिनि साक सरि तो कायसा मेसिन बायसनाम जाखाय बिनि जानि जानि कायसा कायसा सामं दङ पार्टस चिनि बोखा बोथै बबुक जतनि न पार्टस आलादा आलादा दङ अब कायसे कायसे देरामुं फायखांके अब बिनि देरामुं फायथां अबरक न सयसियानि बागैनै ओ आयं मोताय सका ओ तन्त्र मन्त्र आरो चिनि बर' रक गोलोगै थां गे अबरंनो सायमानानि थांगा हांखेनो बखरक्सा केरं रायदा बा खरक्सा सि गोरों सिजाक बरक नांनाय दफाव गे बाहायखे ओंनाय हांखे बोरै खरक्सा सिजाक नुकजाक हांखे नुखुंनो सिमि तिसायाबो पुरा बिनि दफा बा कामि आमसायबो सोरों गोरों उङो हनैसे साजागु बोरै खरक्सा रों गोरों हांखे हंगे चला खरक्सा हंगांगले ब
0: सायसुंसिरुंगे
1: बुरि हंगांगे बनि नुखुंसिमिया बिनि नक्सुनुगारि जतन न फोरोंनि हिनजाव हंगे ओ बहाय आमजाय रग चिनि बुरि रग रोंसोरोंना बेलाय खेनो नांगो हंगे तामनि बागै आबो रुतुक लायना नांगो ताबुक तुक चिनि हाय हा तामनि हिनानि चिनि हायुं तो गोबां मा कुचुक साकाव जतन वान सगै तं ताबो रिसर्च जों जत जागोन केन्सार हाय बेमार तंगो आ बेमार निसे बरनि फाय बहाय कि बनो बहाय के बुथारनाय बिनि यंगनो अबर जतु बिथि रक्से जाका सनाम जागै दङ अंके जों ओ मलो से सकाल मताय हिनि बुथा लागि आंके चिनि दफा बाहायके गोलो गियां नायबा चिनि दफा तायबो उक्लग उस्लै थानाय कान चिनि वान सङ मुं से केबेल चिनि वान सङ मुं करा गिया हिंगे रमदि आं कायसा जागा किसा खनाखा खरक्सा बरक जे खि कसम खिउइ थैका खि कसम खिमा से मताय अजायना हारै मतायनाय रि जाखा हंगांके न सालचानि तायनि सालचांके न थैथांका हिंगे आबो जे तामंगै ओं बरक सायमानिया जदि बिनि बिहिक बा बिनि बाहन जुग संबा पंनि कामियाम जायनि बर' रक सायमान जाखांके जखि कसम तामनि बागै खि

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून

0: को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक एक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी अगरतला आशिक जरूरत रखना का दिल्ली केंद्र निशिमी हिंदी कक्तमा भूवाग्रक बीन यागलो तब खानाबादी कस्टमरी लो हाया के बा बरक दफा जमातिया हदानी कक लामरक ते पांडव पार्टिसिपेट खानि है के मानजांग का मंगल देव बर्मा ते रविन्द्र किशोर देव बर्मा ते पांडान कम थिंग का अजिता त्रिपुरा
3: जेसिनी नांगसा सिंह सालाइका सिंह तीन जमातिया हदारक बहाई कईलै चीनी बै बड़क फैल मंगदाटा नुखा तक जमातिया हदा बुजुन नुगो जे जमातिया हदा बहाय खड़गसा बुरी खड़गसा चलाबाई न

0: 다음에는 정모탕이야이끝나사도는법에다부게다정
1: 응거누구이동만
0: 누구이동만이
2: 에
0: 라이브모아정제농만이에보라보리니그거이제가나면아기신녹회만이정가면얼어넘마탕시네있다보니까한가지다부
2: 게마그색
0: 깔
2: 라요
0: 바
2: 저
0: 보
2: 스펙
0: 서로가색깔라요깔라요한가지제이시보로깔라요한가지저도이나사나나아무탕가다한가지아무또달사탕가나한가지제달상가보일라서강나언거지니부코아어디다성만다이제본래깔피마로어묵으로떠던가그러네아무
1: 따리메리
0: 예리메리시다그래도뭐때허다오보름디란다란디에바아까글이자그러까지리만만피로
1: 아참
0: 예란다란도까지는했지니지니질러서뭐까지만어
2: 응그
0: 디프라니질러디프라티그커뮤니티워그래보라고까지리만어피해봐그타레바버리식라록노가장내실라록가장가장라이프로하야그타로함나낭나이
1: 그타로
0: 하하그타레바버리식라록노가장내실라록람나파노보토묵노버리그타르나카이그타르공카가이제에쿠타하바시웅야쿠타
1: 그타르그타르식그타그타르식라록도보로도하야와하비가장내노
0: 가장내노
1: 하이파노
0: 아무노가르이람다록도묵노아롬디브리식라나카이그거하여하위사이잖아난다한가이우은거트리프리커뮤니티메살림을펠라이야무테라펠라
1: 아라고하이마보롱고아바하키메노마니고시우회자
0: 한가로테테테라사이마노아이란디즈그럭란디즈그럭카이셀라식라로바이카이자카노하야가타로하위이카이자리만글라나야오보보사과어르보정묵자고탐오이즈ที่ประกอบไม่ติดลงมาหายอุตสลาไปบริหมดได้กิจการไรมองบริยนที่รักให้นักสิมองบริเคก็ถ้ารบันจะสลักก็ไปใจจักร
2: ใ
0: ครให้ออกมาหาอุตสลาบันไว้ใจจักรท่านอ่ะบริให้ออกมาหาไหนบริกระทัดของใครเพียงว่ารามดีจะถึงใจ
1: มัน
0: ท
1: ำ
0: อ
1: ะไร
0: กันถ้าไปก็พันบ่ได้ให
1: ้ออกให้ออกเขาเลย
0: คำว่าที่ประกอบไม่ติดไปทางทัศน์ตรงนี้ก็แล้วก็คือถึงตัวบ่ส่งใจที่ไหนไปมาบ่ส่งก็ถึงจุดนั้นได้บ่ล่ะอุ้มอ้ำใจจุดเอาไปแก่จำจะอ้ำใจดอลดอลลูกไปทั้งกายว่าอ้ำใจจุดนี้จุดกิจเท่าไรมึงข้าสุดก็คุณมึงเห็นเรนุกจะก็คิดว่ามันตัวอาบอันมันทันทันมึงทันปีก
1: ันบ่บริจิบริจิอัศล์อัศล์จะหดานี่จะซิสเต็มอาบุเลทีนุตงจะก็สิเลฟเลเมนอาบุทีนุตงตามก็กิจกิจอ้ำใจเรื่องนี้อุ้มกิจกิจตัวมึงจะมึงสกัดไล่แก่กิจกิจมันเลเมนก็สิเลเมนจะก็สกัดไล่แก
0: ่
1: อัศล์สิบิจิตามก็โอเคตรีโอजे हाइन है जे काजक फिमानी और जे हाइन है जे के सिंगल फुजा को हिपा मानो और नो फिरम खान हने मानो ओ जागा ताम के बों ताव से काजे ना थाका के जे ओ हायो हाबन व्यापार से ताबो एकटा फाइसो
0: हा हां
1: के हायो हाबनले डोना ताबो जे जे रांदी जे बो जदिन रांदा रांदा ना खाके तो हायो हाबन कोनो प्रश्न करिखि ना आफुरन के ताबो हाय जे तमुंग रांदी जे ठीकला चलानो काजे खानका वो हायो हाबै मै बरी निखेत्र अब
0: ता खाली आ
1: ता खाली आ तार माने ओ जे हायो हाबना नि बरीनो नासिने बर मुखला जा तुम वो जे त्रिप्रिदो फरम सलाई पर वो ठीक अब इन फाइका तार माने ताबो जो चला ठीकला जे कथार ठीकला वो उ रामजी नो काजे बगिने बर हायो महाबिया दिप्रे बे का हायो मा कथार हायो मा कथार आ
0: आमनि बगे नंग बा खामे नंग ताम बरी कथार जान नंग ना ना ना
1: आ
0: आया दा
1: आ फगे यांग फजि मा उल्टा से नासु गे ते जे चलांगे रांदा
0: रांदा
1: बरेंगे सिगला
0: बरे कथार
1: कथार नि बगे ने
0: हाबै
1: हाबै मानो हायाव
0: गे बरे सोर ओ बरेनो रे कि सिमोंग तो
1: हाया आ हाया
0: थादर कथार जा आमने पर निर्भर खय नंग हायाव हाबै जमना हाबै
1: जमना
0: चलानो निर्भर खय चलाय बरे सोर आ संकाय बरेनो पर काम हाय जत पोज स या पति तंग गय जत पोज बरेनो पखरो रिया को रुजु ना नाय
1: एवं बरे खय रु रुजु समया बरे कथार गा केनो
0: हां
1: किनि दफा कथार चला कथार जत जागाने चिनि वान सुंगु तंगमु हिमु जत जागाने जागाबो जखन तो हायानो से तंगमु हाय कथार माने तो हंका हाया हाय चिनि कथार जागा इनका आबो आबो बहिने चिनि खापिला जागनो चिनि जे त्रिपुर दफा बाय
0: खापिला जागनो हंका मोंगा थंका जमातिया दफनि ककना जमातिया हदानि कक हंका तबु अमन त इरियां हदानि कबु संखिजा मासाले देब्ले
1: संगो तो डिटेल जखन सिंग सलाई पुरो जखन दिन सिस्टम
0: से सिस्टम सलाई
1: सलाई पुरो संगते बाबनो
0: काम करे सिंगो हाबा
1: हाबा नि सलाई
0: काम करे हताउ साका स किजा किजा सिंग मारी थंगा ता
1: हां
2: बाहेके
0: काइजा
2: आम
0: सिमिति आम सिम थंगा ता गरियां तो फोन आजी रियां खतावो দেহি খরকসা নানা।

0: Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Niti Aayog held a meeting with the German delegation aimed at advancing the Indian-Germany Development Partnership in New Delhi. The India-Germany Development Partnership highlighted the complementarity between Germany's technical expertise and development finance capabilities and India's policy ambition and institutional scale. According to the Niti Aayog, the discussions covered key areas of cooperation, including India's net zero transition, renewable energy, circular economy, agricultural transformation, water resource management and others. The government's flagship initiative, Beti Bachao, Beti Padhao, has emerged as a nationwide movement promoting behavioral change and empowering the girl child across the country. Data from the Health Management Information System show that the national sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional delivery. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protests to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई।

0: हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
1: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
0: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित Sword of Honor विशाल कुमार को प्रदान किया गया। Order of Merit में भी Officer Cadet विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी

0: 20 तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

0: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হল আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে, অর্থাৎ 1269 কিলো হার্সে। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে হিন্দি এবং পরে ইংরেজি সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने छठे ओवर में एक विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit today to France and Slovakia to further deepen bilateral ties with the two European countries. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. The two leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. Indian Air Force IAF said a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The IAF has expressed grief at the loss of lives. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief over the loss of 5 air warriors. In a social media post, Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. Principal Secretary to the Prime Minister P.K. Mishra today said that India's cities must be economically productive, environmentally sustainable, socially inclusive, technologically advanced and institutionally resilient. Mr. Mishra said this while addressing the Golden Jubilee celebrations of the National Institute of Urban Affairs, NIUA, in New Delhi. The Principal Secretary said the NIUA has contributed significantly to shaping India's urban discourse, strengthening institutional capacities and supporting cities through evolving development transitions. Mr. Mishra said that India's progress in digital public infrastructure, financial inclusion, renewable energy, logistics and public service delivery has demonstrated both capability and confidence in managing large-scale transformation under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
4: This milestone today is not only an occasion to celebrate an institution, but also an opportunity to reflect on India's urban transformation and the path ahead as we move forward to achieve our goal of Viksit Bharat, envisioned by our Prime Minister. India's development journey today is defined by confidence, aspiration, and unprecedented transformation across infrastructure, technology, governance, and urbanization.
3: Union Transport Minister Nitin Gadkari today said the Ministry of Transport is emphasizing on employment generation alongside infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing a press conference organized in Nagpur to highlight the achievements and developmental initiatives undertaken during the last 12 years of the central government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Gadkari, while reviewing various welfare initiatives of the central government, stated that more than 58 crore bank accounts have been opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana during the last 12 years. In the wake of the Nipah outbreak in Kerala, experts from the National Centre for Disease Control reached Kozhikode district today to review the containment measures.

मुगल बच्चे भी गजब होते हैं, जिस पर मरते हैं उसको मार रखते हैं। मैं भी मुगल बच्चा हूँ, उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देशभर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देशभर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला

अच्छा अभी आप पूरा गाना सीख लिए? अभी जयरामन मास्टर के साथ पूरा गाना, अस्थाई उपस्थाई दो अंतरे सब मिलकर ही ताल के साथ अभी गाना चाहिए। सब तैयार हैं? बानू आप भी तैयार हैं?

0: अच्छा बच्चों, अभी एक कन्नड़ा गाना पूरा आप सीख लिए हैं। मेरा आशा है कि बहुत खुशी के साथ आप मित्रों से मिलकर इस गाना को अच्छी तरह सब जगह में आप गाना चाहिए। नमस्ते बच्चों।
1: धन्यवाद मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी।
2: এতক্ষণ শুনলেন সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত শিক্ষার আসর, আকাশবাণী আগরতলা।

आसिकजरा सोंखनालाय दंमोनि जेसमिन देव बर्मा बायरे चापजाक बेलायनो खोनादो तग्रोचामुं अजराव हायनोहाय बिनि खरांगो तायतांसा रोचामुं नरकनि बागै।

जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों

0: अपने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई GOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर

0: घटना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশ বাণী আগরতলা। এখন শুনবেন নজরুল গীতি, শিল্পী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

0: এতক্ষণ শুনলেন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে নানা রঙের বাংলা গান। সবশেষ গানটি শুনলেন রজনীকান্তের গান, শিল্পী ছিলেন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে অর্থাৎ 1270 কিলোহার্টজে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র থেকে। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আকাশবাণী সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং।
1: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
2: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा We bring you a saxophone recital by U. Shiva Prasad. U. Shiva Prasad, born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline,

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग हंसध्वनि। Continuing his recital, यू शिव प्रसाद now presents another composition based on राग नवरस कानड़ा। Composition निन्नू वीणा रामा, composed by त्याग राजा, is set to रूपकम तालम।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.